अजामल गज गण का पतत कर्म कीने ते उतर पार परे राम नाम लीने सुकर कुकर जून भरम तउ लाजना आई राम नाम छाड़ अमृत काहे बिख खाई तज भरम कर्म बेदन खेत राम नाम ले गुर प्रसाद जन कबीर राम कर सुनेही तनासरी बाणी भगत नाम देव जी की एको ओंकार सतगुर प्रसाद गहरी करके नीमखदाई उपर मन